नाम ले जा रो तने ने दिखा नहीं से प्यारे चौसिया में यायो सूरा पुबरी शिवा ठे आलमी तो या प्राणी पिखा तने हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वां कोने बाबी हेलो वे क्यों भी मैं मतिया मुबू